0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी यानंतर ठीक 6 वाजता दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या आम्ही सहक्षेपित करू. 6:05 भक्तिसंगीताचा कार्यक्रम असेल मंगल प्रभात.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है. नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है. आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें. कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें. इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं. इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है. अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है. वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे. आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है. आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है. विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है. श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही.

0: सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसह 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। 6:05 झाली आहेत। मंगलप्रभात या भक्तीसंगीताच्या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया श्री विष्णू स्तोत्र।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिक दृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मदुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रिय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-शत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियन्त्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावना वर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन एसआईआर इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां ईवीएम प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला

0: सुरेश भट यांचं गीत शरद जांभेकर आणि सहकलाकारांनी गायलेलं होतं. संगीत होतं प्रभाकर पंडित यांचं. थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारी बातमीपत्र आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया. महिला और बाल विकास मंत्रालय के

0: राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत

0: ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: जालिम लोशन,
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस

0: परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
2: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
3: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना गांव का जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development.

0: उस्ताद निजामुद्दीन खान यांच्या तबलावादनात ताल झपताल आणि रूपक ताल आत्ता आपण ऐकलात. त्यांना सारंगी लहरा साथ केली होती अनंत कुंटे यांनी. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: शेतकरी बांधवांनो लक्ष द्या, शेतीशी संबंधित तुमचे प्रश्न, तुमच्या अडचणी आणि तुमच्या अनुभवांवर थेट संवाद साधण्यासाठी ऐका आकाशवाणी मुंबई FM गोल्ड वरील लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हॅलो फार्मर्स.
2: शेतीतील नवनवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक पद्धती, बाजारपेठ.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है. पुलिस ने इस संबंध में CJP द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है. नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है. सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी. प्रस्तावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं. इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी. हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी. प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं. रेलवे के DCP बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं.
4: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं. दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है. टोटल हमने 334 जो GRP के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं. प्लस हमने CAPF की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे.
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे. यह अभ्यास 26

0: सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आपूर्ति, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाय होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। सकाळची 11:05 झालेली आहेत। आता चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार।

वाकड़ वाकड़ तिकड़ तिकड़ वाकड़ वाकड़ तिकड़ वाकड़ वाकड़ तिकड़ तिकड़ वाकड़ वाकड़ तिकड़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: श्री चौहान ने उपचुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल, असम, पुदुचेरी में भाजपा और एनडीए को शानदार जीत मिली है। इससे पहले राजस्थान और त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश स्पष्ट है, देश का संकल्प विकसित भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे, और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी साझा करेंगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस

500 शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया सोमवार को अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन करेंगे। ये खेल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये खेल प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक आदान प्रदान, विरासत संरक्षण और खेल के माध्यम से जन सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच पुरुषों का तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोते हो, आताच आपण परिसर या कार्यक्रमात
1: नमस्कार,
0: जलव्यवस्थापन
1: आकाशवाणी से
0: या
1: दोपहर
0: विषयावर
1: समाचार के साथ
0: डॉक्टर
1: मैं
0: अपरूप
1: मुकेश कुमार बल।
0: अरावतकर
1: दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
2: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
1: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
3: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
1: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन

0: पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
2: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
4: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
5: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
4: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक

पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: काई पैंजन झुमकेदार
1: गुलाची दार
0: आपाई पैंजन झुमकेदार
1: गुलाची दार
0: कोण सरदार हिता भरतार
1: कोण सरदार हिता भरतार
0: कोण सरदार हिता भरतार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
1: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, लेकिन आपने

0: अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रूपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। The BJP today said that its victory in the recent bipolls has proved that democracy has crushed the attempts of those who want to spread anarchy in the country. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP MP Ravi Shankar Prasad said the BJP is not against peaceful protests, but the opposition parties are resorting to street protests to compensate for their electoral losses. He also accused the opposition parties of creating hardships to the people of Delhi for the past 3 to 4 days through their protests. The BJP MP further said that the country will be run by democracy and through accountability by those elected to the parliament. He also accused the leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, of tarnishing the image of constitutional institutions.
0: The BJP would like to particularly highlight the stellar performance of the party in Bengal, in Assam, in Pondicherry, NDA has happened when the whole movement for anarchy is going on in Delhi and various parts of the country. We protest ke khilaf nahi karte hain, swabhavik hai loktantra mein hona bhi chahiye, lekin aapne apni haar ke karan sadak ke protest ko weaponize kar liya hai.
2: The Delhi police has made extensive security arrangements in the New Delhi area to ensure public safety in view of the call of protest at Jantar Mantar by the CJP today. Police personnel are deployed at multiple checkpoints in New Delhi district. Talking to the media, Deputy Commissioner

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जंतर मंतर स्थले विरोध समाह्वानेषु दिल्ली आरक्षी बलेन प्रवर्तिता सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था। अनेके संदिग्धाः निरुद्धाः। राष्ट्रीय राजधान्यां रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः। संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य लोकतंत्रे च जनविश्वास भंजनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः। प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्म दृष्टिः। आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेना बलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः। संयुक्तराष्ट्र सभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम्। उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम्। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीरेषु अतिवृष्टेः व्यंजितं पूर्वानुमानम्।

0: प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्या प्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारंपरिक हिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय, समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मंगलमय प्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्णभद्रस्य विशिष्ट वाचनेन, संस्कृत मन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अंगं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन सम्पूर्ण परिवेशः भक्त्या, उत्कंठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालय पर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मंगलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्, सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयोज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टीभवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुम् इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः वरिष्ठ नेता च रविशंकर प्रसादः अवोचत् यत् भारतीय जनता दलं शान्तिपूर्ण प्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचन पराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोध प्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपा नेत्राग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिक मर्यादया, संसदि निर्वाचित प्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधीनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिक संस्थानां गरिमा कलंकिता अवमानिता च।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता

0: को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्र शासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नं अपृथक्करणीयं अंगमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसद सदस्या महिमा कुमारी मेवाड़ महोदया पाकिस्तान प्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्क स्थितेन संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिक पटले सूचितं यत् संसद सदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़ महोदयया जम्मू कश्मीर संबद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्त राष्ट्र मंचस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्र निंदा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्र हृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारत ऋतु विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।
2: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 होत आहेत। सादर करीत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा।
3: दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेके हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तो हम नवरात्र के संबंधित कुछ बातचीत भी करेंगे और एक हमारी कवित्री हैं उनकी कविताएं भी सुनेंगे। उन कविताओं में नारी रूपण भी होगा और कुछ आज सामाजिक बातें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले जरा आज की चर्चा कर लें। अगर जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, पहचान है, सुविधाएं हैं, लेकिन मुश्किल समय में उसका सामना करने का हौसला कहां से लाएं, तो क्या हम सचमुच में शक्तिशाली हैं? और अगर हमारे पास बहुत कुछ ना हो लेकिन विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस ना हो, तब कौन याद आता है? तब माँ दुर्गा याद आती है। और माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक एक दिन में हमें शक्ति के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस सारे के ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कमलेश पाठक जो अपनी कविताएं लेकर आई हैं उनकी एक कविता सुनते हैं, फिर हम आपको इस कार्यक्रम में कुछ आगे बात करेंगे।
4: कविता का शीर्षक है दिनमणि। क्यों चले आते हो सुबह सुबह, खिड़की से अपनी रश्मियां बिखेरते, मेरी ही कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियों से अपनी किरणों का रिफ्लेक्शन डाल डाल कर मेरी नींद से बोझिल आंखों को चुंधियाते। पता है कल की रात बड़ी बेकल थी, बोझिल थी, अन्यमनस्क और उदास भी। सोने में हुई बड़ी देर शिवाजी सावंत के मृत्युंजय को पढ़ते पढ़ते। बड़े हो महान, बड़े हो सम्मानीय, हो बड़े नियमों के पाबंद तुम और अत्यंत शक्तिशाली भी, विश्व के नियंता और सृष्टि के संचालक भी। पर हो तो पुरुष ना, क्यों भरमाया था कुंती का मन तुमने, भोली सी कन्या को क्यों डाला विभ्रम में। तुम्हारा क्या, तुम तो बने रहे वैसे ही आभामय, कीर्तिमान, देदीप्यमान, तेजस्वी, तेजोमय और विभूति भूषण। हमेशा की भांति स्त्री ही हुई लज्जित और अपमानित, शर्मसार कुंती हुई अपने ही बेटे के सामने। शूरवीर धनुर्धर ने जलते हुए सवाल किए अपनी विवश माँ से। सबसे दुखद, सबसे झकझोरने वाली बात, महारथी कर्ण ने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, पिता को किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने प्रश्नों के तीर फेंके अपनी ही माँ की तरफ, सवाल किए तो सिर्फ अपनी माँ से, भला बुरा कहा तो अपनी जन्मदात्री को। दानवीर भी नहीं समझ सके अपनी माँ की व्यथा और मजबूरी को। तो हे दिनमणि, मत आया करो मुझे जगाने बिना मेरी मर्जी के, हम अपनी दिनचर्या स्वयं निर्धारित करेंगे।
3: कमलेश पाठक की कविता आपने सुनी। उस कविता में भी आपने नारी के सृजन के बारे में, नारी की शक्तियों के बारे में, नारी का आज का जो स्थान है उस बारे में, उनका एक बहुत अच्छा जो कह दीजिए कि उन्होंने उसको छुआ था, आपने उसके बारे में सुना। लेकिन शक्ति की आराधना से आत्मशक्ति की पहचान तक, ये नवरात्र के ऊपर एक विशेष कह दीजिए हमने लेख लिखा है, उसके बारे में आप जरा आपको बताते हैं कि कभी आपने सोचा है कि साल में आने वाले ये 9 दिन आखिर में हमें सिखाने के आते हैं? क्या नवरात्र सिर्फ व्रत रखने का नाम है या सिर्फ मंदिर जाने, पूजा करने और

गरबा खेलने का उत्सव है, या फिर इन 9 दिनों के पीछे कोई ऐसी जीवन दृष्टि छिपी है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि नवरात्र का अर्थ है। 9 रातें, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर की 9 रातें नहीं है, ये 9 रातें हमें अपने भीतर उतरने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपने भीतर मौजूद शक्ति को जगाने का अवसर देती हैं। और शायद इसीलिए नवरात्र आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सदियों पहले हुआ करते थे। भारतीय साहित्य में शक्ति को नारी स्वरूप रूप में देखा गया है। मां दुर्गा सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, जो भय के सामने साहस बनती है, जो निराशा के बीच उम्मीद जगाती है। हमारे यहां एक सुंदर लिखा गया है, विचार है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात यह वह शक्ति है जो हर जीव में किसी न किसी रूप में मौजूद है। यानी शक्ति बाहर कहीं दूर नहीं है, शक्ति हमारे भीतर है। नवरात्र और मां दुर्गा की कथा पौराणिक परंपरा में महिषासुर के अत्याचार से देवता और मनुष्य परेशान थे। कहा जाता है कि तब विभिन्न देवताओं की शक्तियों के समन्वय से देवी दुर्गा का प्रकाट्य हुआ और देवी ने महिषासुर का अंत किया। अब अगर इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो इसमें एक बड़ा संदेश छिपा है। महिषासुर सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, आज का महिषासुर क्या हो सकता है, जरा इस बारे में सोचिए। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारी नफरत, हमारी ईर्ष्या, हमारा भय और कभी कभी हमारी अपनी नकारात्मक सोच, ये सारे के सारे महिषासुर की तरह हमारे सामने खड़े हैं। और शायद नवरात्रे हमें याद दिलाते हैं कि बाहर की बुराइयों से लड़ने से पहले अपने भीतर की बुराई को पहचानना बहुत जरूरी है। 9 दिन 9 शक्तियां। नवरात्रे के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। इन नामों को अगर हम केवल धार्मिक दृष्टि से न देखकर जीवन के प्रतीकों के रूप में समझें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो हर रूप में कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलती है। शैलपुत्री स्थिरता का संदेश देती है, जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन हमारे मूल्य नहीं बदलने चाहिए। ब्रह्मचारिणी तप और अनुशासन की याद दिलाती है, आज के इंस्टा और ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। चंद्रघंटा साहस और संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ साहस काफी नहीं है, साहस के साथ विवेक भी बहुत जरूरी है। कुष्मांडा सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, यानी अंधेरे में भी कुछ नया पैदा करने की क्षमता होना। स्कंद माता ममता और जिम्मेदारी का संदेश देती हैं। कात्यायनी संघर्ष और आत्मविश्वास की शक्ति है। कालरात्रि हमें याद दिलाती है कि डर से भागना समाधान नहीं है, कभी कभी अपने डर का सामना करना पड़ता है। महागौरी शुद्धता और सरलता का प्रतीक है और सिद्धदात्री साधना के फल और पूर्णता का प्रतीक है। देखा, 9 दिन 9 रूप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सबक देते हैं। आज के समय में नवरात्रे क्यों जरूरी हैं, कभी सोचा है आपने? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। हमारे पास स्मार्टफोन है, दुनिया की को हम हथेली पर रखकर चलते हैं लेकिन कई बार अपने ही मन में कनेक्शन टूट जाता है। हम हजारों लोगों से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं लेकिन मन की बातें कहने के लिए किसी एक इंसान की तलाश करते रहते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इनर पीस जैसे खत्म सी हो गई है। हम तेज भाग रहे हैं लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि जाना किस तरफ है। ऐसे समय नवरात्र हमें दिनों का एक सुंदर संदेश देते हैं और वे अवसर भी देते हैं कि थोड़ा रुकिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं, मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है क्या, मेरे भीतर कौन सी आदत मेरी शक्ति बन रही है और कौन सी आदत मेरी कमजोरी। नवरात्र एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। जिस संस्कृति में हम देवी की पूजा करते हैं वह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर महिला का सम्मान, सुरक्षा और सम्मान अवसर की हकदार है। वो मां दुर्गा की पूजा सिर्फ दीप जलाने तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हम अपनी बेटियों को सपने देखने दें, अपनी बहनों को आगे बढ़ने दें, अपनी माताओं को इच्छाओं को महत्व दें और महिलाओं को सिर्फ सम्मान के शब्द नहीं, सम्मान के अधिकार और अवसर भी दें, तभी शक्ति की आराधना सार्थक होगी। बहुत से लोग नवरात्र के दिनों में व्रत रखते हैं। व्रत का असली मतलब क्या है? नवरात्र में व्रत भी एक परंपरा है लेकिन व्रत का अर्थ केवल भोजन से दूरी बनाना नहीं है, शायद इसका एक गहरा अर्थ भी हो सकता है।

0: समय के लिए अपनी नकारात्मक आदतों पर व्रत रखिए। 9 दिन गुस्से से दूर रहें, 9 दिन गुस्से का व्रत करें, 9 दिन चुगली का व्रत करें, 9 दिन किसी को नीचा दिखाने का व्रत करें, 9 दिन बेवजह बहस ना करने का व्रत करें, 9 दिन नकारात्मक सोच का व्रत करें, और क्यों ना 9 दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का संकल्प लिया जाए। सोचिए, हम ऐसा कर लें तो नवरात्र केवल कैलेंडर में नहीं रहेंगे बल्कि हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी नवरात्र और इसके उत्सव को अलग से देखती है। आज की इस पीढ़ी में नवरात्र को अलग से देखने के बहुत सारे तरीके भी खोज लिए हैं। कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं संगीत है, कहीं उत्सव है। यह सब हमारी संस्कृति की खूबसूरती है और हमें इसके साथ लेकर ही चलना है। परंपराओं के साथ रहना, रंग के साथ साथ चलना, यह हमें आगे बढ़ने का प्रतीक भी मानता है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और बातें भी जोड़नी चाहिए। लेकिन आधुनिकता के साथ साथ मूल संदेश को भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, उत्सव मनाइए, लेकिन साथ साथ उस शक्ति को भी याद रखिए जिसका उत्सव हम मना रहे हैं, क्योंकि उत्सव तब और सुंदर हो जाता है जब उसके पीछे का अर्थ भी सबको समझ आ रहा हो। नवरात्र हमें यह संदेश देते हैं कि अगर इन 9 दिनों में हम अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करें तो एक छोटा सा संकल्प लिया जा सकता है। क्या संकल्प लिया जा सकता है? पहले दिन अपने भीतर झांकने का, दूसरे दिन किसी बुरी आदत को पहचानने का, तीसरे दिन क्रोध को नियंत्रित करने का, और चौथे दिन किसी रिश्ते को समय देने का, और पांचवें दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का, और छठे दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का, सातवें दिन अपने डर का सामना करने का, 8वें दिन किसी को माफ करने का, और 9वें दिन अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने का। अगर 9 दिनों के बाद भी हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए, हमारा व्यवहार थोड़ा बेहतर हो जाए, हमारे भीतर की ऊर्जा किसी दूसरे के लिए और संवेदना पैदा करने लगे, तो समझिए हमारे नवरात्रे को सिर्फ मनाया ही नहीं है, हमने नवरात्रे को जिया है। नवरात्रे हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। शक्ति मिले तो अहंकार मत कीजिए, ज्ञान मिले तो विनम्र रहिए, सफलता मिले तो दूसरों का हाथ थामिए, और मुश्किल आए तो अपने भीतर की शक्ति को याद कीजिए। क्योंकि जिंदगी में अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता है, कभी कभी एक छोटा सा दीपक अपने भीतर भी जलाना पड़ता है। तो इस नवरात्रि माँ में सिर्फ इतना मत मांगिए कि मेरी जिंदगी की सुविधाएं बहुत बढ़ जाएं, मेरी मुश्किलें खत्म कर दे, बल्कि ये कहिए कि माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मुश्किलों का सामना कर सकूं, और शायद यही नवरात्र का सबसे खूबसूरत संदेश होगा। शक्ति बाहर खोजने से पहले अपने भीतर पहचानिए। नवरात्र के संबंध में शक्ति की आराधना और आत्मशक्ति की पहचान तक ये वार्ता आपने सुनी, लेकिन कमलेश जी हमारे बीच बैठी हैं, इनके हाथ में मैं देख रहा हूं कि कविताएं बहुत चमक रही हैं, कुछ अलग सी विशेष सी कविता लेकर आई हमारे बीच आई हैं। कमलेश जी, अब ओवर टू यू, आप अपनी कविता सुनाए।
1: कविता का शीर्षक है उत्सव। आओ मनाए साड़ी उत्सव। उत्सव भव्य परिधान के सुंदरतम उपक्रम का उत्सव, स्त्री के व्यक्तित्व को गरिमामय बनाती इस रचना धर्मिता का उत्सव, वनिता के सौंदर्य को चार चांद लगाती इस भूषा का उत्सव, एक अनवरत परंपरा का उत्सव, हमारी संस्कृति का उत्सव साड़ी का उत्सव, हिम्मत साहस सहनशीलता संघर्ष और शौर्य की पराकाष्ठा का उत्सव, लक्ष्मीबाई का उत्सव, ज्ञान बुद्धि और विवेक का उत्सव, बहनाबाई का उत्सव, ममता और वात्सल्य का उत्सव, हीर कणिका उत्सव, सेवा समर्पण और संवेदना का उत्सव, मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उत्सव, स्त्री के होने का आओ मनाए साड़ी उत्सव। उत्सव स्त्री के होने का आओ मनाए साड़ी उत्सव। मेरी इस कविता का शीर्षक है प्रेम। उन्होंने यादों के पन्ने कुछ इस तरह पलटे, उन्होंने यादों के पन्ने कुछ इस तरह पलटे कि किसी याद को चोट न लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता, और हर याद के साथ उनके झुर्रियों भरे चेहरे से जो आप झलक रही थी उस रोशनी में मैंने देखा, हर याद के साथ उनके झुर्रियों भरे चेहरे से जो आप झलक रही थी उस रोशनी में मैंने देखा, उनकी आंखों में तैरता प्रेम का सागर आज भी जस का तस, वैसा ही कमसिन, वैसा ही रंगीन, वैसा ही उदास, वैसा ही गमगीन, उनकी आंखों में तैरता प्रेम का सागर आज भी जस का तस, वैसा ही कमसिन, वैसा

0: वैसा ही रंगीन, वैसा ही उदास, वैसा ही गमगीन, वैसा ही चपल और चंचल, और उनके पोपले होठों पर हंसी मचल गई। कविता का शीर्षक है कुमुदनी। कुमुदनी बोली, कमल से कभी तो आओ पास, धीरज मेरा छूट रहा है, टूट रही है आस। मैं रातों को खिलने वाली, तुम जागृत होते सुबहों को, नदी के दो कूल हम तुम, जा रही है जिंदगी यूं बेसुरी सी। मैं रातों को खिलने वाली, तुम जागृत होते सुबहों को, नदी के दो कूल हम तुम, जा रही है जिंदगी यूं बेसुरी सी। कमल किंचित मुस्कुराया, कमलनी का ध्यान करके हृदय में उच्छ्वास छाया। कहने लगा कोमल कमलनी, प्रेम का परिणाम मिलना क्यों भला हो, प्रेम तो शाश्वत चिरंतन सत्य है प्रिय, मिलन का सुख तो क्षणिक है, विरह की ही वेदना तो प्रेम का प्रतिबिंब है प्रिय। अरे निष्ठुर नहीं आता समझ मुझको ये तुम्हारा दिव्य दर्शन, एक नज़र तो देख लूँ उन तुम्हारी पंखुरियों को, उपमित होती सुंदर आँखें, राजीव लोचन कमल नयन, क्यों कहलाते चक्षु सुलोचन। प्रेम की अनुभूति को अनुभूति रहने दो, अहो मत करो उद्विग्न मन को, भावना के बेग में तुम मत बहो, नियति के निर्देश को मानो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय तल में, मन में मेरे तुम रहो। जल ही जीवन है, और आज मेरी कविता है पानी की। कविता का शीर्षक है मैं पानी हूँ। मैं पानी हूँ, बरसता हूँ बादलों से, छलकता हूँ आँखों से, बहता हूँ पसीने में, उफनता हूँ समुद्र में। मैं पानी हूँ, लहराता हूँ नदियों में, झरता हूँ झरनों से, कूदता हूँ प्रपातों से, सुबह सुबह हंसता हूँ तुहिन कणों में। मैं पानी हूँ, पंछी की प्यास में, जीवन की आस में, निर्मल उच्छ्वास में, व्यवहल निश्वास में, पोरन के पत्तों पर ठहरता हूँ बूंदों में, गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी और कावेरी में, शिव की जटाओं में, ब्रह्मपुत्र का राजा हूँ मैं, जमुना की लहर बन, भादों की काली अंधेरी रात में, उमकता हूँ कान्हा के नन्हे नन्हे पैरों के स्पर्श को, लड़ता हूँ हवाओं से, मचलता हूँ घटाओं में, मोती सा टपकता हूँ नवयौवना के केशों से, लड़ता हूँ हवाओं से, मचलता हूँ घटाओं में, मोती सा टपकता हूँ नवयौवना के केशों से, अर्पण में तर्पण में, हृदय के स्पंदन में, मनस्वी के मनन में, ऋषियों के तपन में, यज्ञ और हवन में, उड़ता हूँ भाव बन, मैं पानी हूँ। दुर्योधन की फिसलन और द्रौपदी के अट्टहास में, मैं ही तो हूँ महाभारत के मूल में। दुर्योधन की फिसलन और द्रौपदी के अट्टहास में, मैं ही तो हूँ महाभारत के मूल में, वो मैं ही हूँ, शकुंतला की अंगूठी डूबी थी जिसमें, सूखा था देवकी के आंचल में दूध बन, सुनामी भी मैं था, कोशी के घटवार की आंखों में भी मैं ही था। कभी कभी बरसता हूँ बेमौसम भी, क्योंकि ये पछुआ हवाएं जब भी करती हैं गुदगुदी, सिहर जाता हूँ मैं, नहीं रह पाता अपने आपे में। मैं पानी हूँ, नीर जल वारी सलिल, मैं ही सब तरफ, ढल जाता हूँ हर रूप में, मिल जाता हूँ हर रंग में, क्योंकि मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।
1: कमलेश जी की कविता के बाद हमने बात की हिंदी की। हिंदी में बात करना हम सबको सहज भी लगता है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, क्यों ना आज भाषा के ऊपर कुछ बात हो जाए। और भाषा के ऊपर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी भाषा आपका गौरव।
2: अपनी मातृभाषा को या कहे अपनी माँ की भाषा को बालक स्वतः ही सीख लेता है और वही उसकी भाषा बन जाती है। भाषा यानी उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, उसकी पहचान भी बन जाता है, और आपका ये पहचान आपको गौरवान्वित करता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत बहुभाषी देश है और हमारे पास भाषाओं की इतनी बड़ी संपदा है कि दुनिया के अन्य कोई भी देश हमारी बराबरी नहीं कर सकता। संवेदना की स्याही से जब कण की कूची शब्द चित्र रचे, तब भाषा जन्मती है। कहते हैं देह स्वयं ईश्वर है और नित्य उसके दर्शन का माध्यम।

0: तरह भाषा भी वो भगवान है जिसके दर्शन होठों के माध्यम से होते हैं। ये होठ सबसे पहले अपनी मातृभाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक हिंदी के निर्माताओं में एक भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्तमान समय से लगभग 150 साल पहले उन्होंने अपनी कविता निज भाषा में लिखा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं यह कुसूल। यदि हम विचार करें तो भाषा वास्तव में अनुभूति की आंशिक अभिव्यक्ति है। यदि सब कुछ भाषा में अभिव्यक्त हो जाता तो भाषा भाव नामक संज्ञा के गढ़े जाने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा में कहने की अनिवार्यता है, जबकि भाव अनकही भाषा है। वाचाल तो मौन में भी होता है, लेकिन उसकी परिणीति बोलने में होती है। भाषा वो मानी जाती है जिसकी परिणीति बोल में हो, अक्षर में हो या चित्रमयता में हो। भाषा को लेकर लंबे विमर्श है। व्याकरण के रूप में कृतियां हैं और पूरा एक शास्त्र है जिसे भाषा शास्त्र कहते हैं, लेकिन भाषा को शास्त्र अपने पाश में नहीं बांध सकते, वो बंधन जयी है। भाषा उद्दाम वेग से बहने वाली सदनीरा सरिता है, उसे शास्त्र के तटबंध नहीं बांध सकते। प्रत्येक भाषाभाषी अपनी भाषा को अपनी बोली बानी में देखता, सुनता और अनुभव करता है, तो अपनी बोली अपनी भाषा उसे सदैव मीठी लगती है। भाषा का सीधा संबंध स्वाभिमान से है। भाषा मनुष्य की नहीं, ईश्वर की पवित्र देन है। इसलिए अपनी भाषा को अपने अहंकार से जोड़ना और दूसरों की भाषा का अनादर करना ईश्वर की देन का अपमान है। सबकी भाषा मेरी भाषा की भांति ही सम्मान की अधिकारिणी है। जब ये भाव उत्पन्न होगा तो हमारी कामना होगी कि दूसरे की भाषा भी कभी मेरी भाषा बन जाए और विनोद कुमार शुक्ल की ये पंक्तियां साकार हो उठे। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूँ।
1: श्रोते हो, आताच आपण हिंदी कार्यक्रम विविध ऐकलात। हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून।
2: काही संघर्ष आपल्याला तोडत नाहीत, उलट अधिक कणखर बनवतात, ही गोष्ट आहे सुषमाची। परिस्थिती, आजार आणि समाजाच्या गैरसमजांना सामोरं जात शिक्षण पूर्ण करून स्वतःच्या पायावर उभी राहिलेली सुषमा। तिची कहाणी साकारत आहेत अमेय बोरकर, कुहू दातार आणि पल्लवी वैद्य। लेखिका सारिका ढेरंगे। नक्की ऐका मालिका उमेद जीवनाची भाग पहिला, बुधवार दिनांक 14 ऑक्टोबर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी

0: नहीं डाले
1: सब नहीं। आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
0: सच है
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में

0: सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
1: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन

0: दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व

बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था। यानी बालिका शिक्षा का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था। फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और न चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है।

बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की, एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए, ऐसा है कि सीसीआरटी, दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर, इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेन करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों सुविधाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है। तो ये बहुत अहम, एक बहुत अच्छा एक कार्य है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग, बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कलाग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कलाग्राम तो निश्चित ही ये दो डिवीजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे। एकेडमिक पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे किससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं कहीं मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स, इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम, ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी है। तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी, देश भर के जितने आर्टिस्ट है उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहां से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक जनरेशन भी होगा।
0: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
1: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप

0: क्यों है, ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलेबरेटिव प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओ जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं, उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी एक्टिविटीज में भी हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर स्टैब्लिश है द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है, हमारी प्रांगण में हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है, और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे, और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपोर्ट स्लॉट लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे, और उनको हम जगह भी देंगे, और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक काम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग कि जो प्रोफेशनली भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, उसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स भारत में कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।

अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है, और इसी क्रम में हमारे

0: अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के न होने में बसती है। आशिमा की कला इसी न होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयाज में, विच इज वहां पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में। और वहां पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगेन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इन टू कंटेम्प्रेरी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ, उनकी डिटेल्स जो मटीरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक,
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। तो ये स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई, मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहां जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है, तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू रिमेम्बर थिंग्स। एंड वेरी ऑफन यू गो टू अ टेम्पल, वहां पर भी आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। वहां पर जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम देयर, और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, विशेज मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली गेट सम सुकून मिलता है। तो मैटर एक्चुअली रिमेम्बर करता है कुछ चीज, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली। और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्ट वर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है। क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जो सा है, ये मैंने अपने आप बनाया है, ये बनाया है इस वेस्ट सिल्क का, और वेस्ट सिल्क बहुत फ्रेजाइल होता है। सो मैं दिखाना चाहती थी कि मेमोरी भी बहुत नाजुक है चीज़ों की, ये सब चीज़ों की मेमोरी, सब मेमोरी फ्रेजाइल है। और ये सब मेरे आर्ट वर्क में मैं नाजुकपन दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ऑर्गेन्जा यूज किया है क्लॉथ में, डबल ट्रिपल लेयर के, काफी लेयर्स के ऑर्गेन्जा किए हैं, और फिर हैंड स्टिचिंग करी है, और वो भी नाजुक दिखा रही है। और फिर ये सारी चीजें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीजें जो फेंकी हुई चीजें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीजें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिजोल्व किया है, ये डिजोल्व किया है।

0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी। सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर। एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है, और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
2: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
1: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
2: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
3: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रॉमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाए वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इंडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि घर में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहां पे कुछ भी खाना बन रहा है तो दो चीजें, वहां पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के एक दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड्स ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम्स बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके

0: हिलाते रहना डेली, और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है, तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंकिए मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डायल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए, और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में प्रीटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं, बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है, जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई, तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है, तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे, उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा, और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितना मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है,
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति।
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को। सेमनगुडी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खां, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल, ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं, एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ۲۰۱۳ में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

0: नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा। सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना, उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी। और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है, अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आप इस कार्यक्रम में कर्नाटिक शैली में गायन सुनेंगे। आज की कलाकार हैं अर्चना उपाध्याय।
2: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट यू आर गोइंग टू लिसन टू अ कर्नाटिक वोकल बाय अर्चना उपाध्याय।
1: अर्चना उपाध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। अर्चना को MS सुबलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और रागलय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
2: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर म्यूजिक ट्रेनिंग इन 2008 अंडर विद्वान वसंत लक्ष्मी हेब्बार एंड डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार। She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Shri Vinay Varanasi across India, Dubai and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Award, first prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 101 compositions under the Dasarchane project.
1: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगड़ा और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर हैं बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं, जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है।
2: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगड़ा, ऑन द मृदंगम बाय सुनाद कृष्णा अमय एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्ण होसमने। अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, अ वर्णा इन राग बहुदारी सेट टू आदिताला कंपोज्ड बाय लालगुडी जी जयरामन।

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतीया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतीया, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर श्री गुरु गुहा विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताला।

0: तथा मोरसिंह पर बालकृष्ण भस्म ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगला तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mridangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक

0: रात्रीचे 2 वाजत आहेत. आता ऐकूया हिंदी कार्यक्रम विविधा.
1: दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं. आज नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, तो हम नवरात्रि के संबंधित कुछ बातचीत भी करेंगे और एक हमारी कवित्री हैं, उनकी कविताएं भी सुनेंगे. उन कविताओं में नारी रूपण भी होगा और कुछ आज सामाजिक बातें भी होंगी. लेकिन सबसे पहले जरा आज की चर्चा कर लें. अगर जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, पहचान है, सुविधाएं हैं, लेकिन मुश्किल समय में उसका सामना करने का हौसला कहाँ से लाएं, तो क्या हम सचमुच में शक्तिशाली हैं? और अगर हमारे पास बहुत कुछ ना हो लेकिन विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने का साहस ना हो, तब कौन याद आता है? तब माँ दुर्गा याद आती है. और माँ दुर्गा के 9 रूपों में एक एक दिन में हमें शक्ति के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इस सारे के ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कमलेश पाठक जो अपनी कविताएं लेकर आई हैं उनकी एक कविता सुनते हैं, फिर हम आपको इस कार्यक्रम में कुछ आगे बात करेंगे.
2: कविता का शीर्षक है दिनमणि. क्यों चले आते हो सुबह सुबह, खिड़की से अपनी रश्मियां बिखेरते, मेरी कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियों से अपनी किरणों का रिफ्लेक्शन डाल डाल कर मेरी नींद से बोझिल आंखों को चुंधियाते. पता है

0: कल की रात बड़ी बेकल थी, बोझिल थी, अन्यमनस्क और उदास भी। सोने में हुई बड़ी देर, शिवाजी सावंत के मृत्युंजय को पढ़ते पढ़ते। बड़े हो महान, बड़े हो सम्मानीय, हो बड़े नियमों के पाबंद तुम और अत्यंत शक्तिशाली भी। विश्व के नियंता और सृष्टि के संचालक भी, पर हो तो पुरुष ना। क्यों भरमाया था कुंती का मन तुमने, भोली सी कन्या को क्यों डाला विभ्रम में। तुम्हारा क्या, तुम तो बने रहे वैसे ही आभामय, कीर्तिमान, देदीप्यमान, तेजस्वी, तेजोमय और विभूति भूषण। हमेशा की भांति स्त्री ही हुई लज्जित और अपमानित, शर्मसार कुंती हुई अपने ही बेटे के सामने। शूरवीर धनुर्धर ने जलते हुए सवाल किए अपनी विवश माँ से। सबसे दुखद, सबसे झकझोरने वाली बात, महारथी कर्ण ने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, पिता को किसी कटघरे में खड़ा नहीं किया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने प्रश्नों के तीर फेंके अपनी ही माँ की तरफ। सवाल किए तो सिर्फ अपनी माँ से, भला बुरा कहा तो अपनी जन्मदात्री को। दानवीर भी नहीं समझ सके अपनी माँ की व्यथा और मजबूरी को। तो हे दिनमणि, मत आया करो मुझे जगाने बिना मेरी मर्जी के, हम अपनी दिनचर्या स्वयं निर्धारित करेंगे।
1: कमलेश पाठक की कविता आपने सुनी। उस कविता में भी आपने नारी के सृजन के बारे में, नारी की शक्तियों के बारे में, नारी का आज का जो स्थान है उस बारे में, उनका एक बहुत अच्छा, जो कह दीजिए कि उन्होंने उसको छुआ था, आपने उसके बारे में सुना। लेकिन शक्ति की आराधना से आत्मशक्ति की पहचान तक, ये नवरात्र के ऊपर एक विशेष कह दीजिए हमने लेख लिखा है, उसके बारे में आप जरा आपको बताते हैं कि कभी आपने सोचा है कि साल में आने वाले ये 9 दिन आखिर में हमें सिखाने के आते हैं? क्या नवरात्र सिर्फ व्रत रखने का नाम है, या सिर्फ मंदिर जाने, पूजा करने और गरबा खेलने का उत्सव है, या फिर इन 9 दिनों के पीछे कोई ऐसी जीवन दृष्टि छिपी है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि नवरात्र का अर्थ है? 9 रातें, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर की 9 रातें नहीं है। ये 9 रातें हमें अपने भीतर उतरने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और अपने भीतर मौजूद शक्ति को जगाने का अवसर देती हैं, और शायद इसीलिए नवरात्र आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सदियों पहले हुआ करते थे। भारतीय साहित्य में शक्ति को नारी स्वरूप रूप में देखा गया है। मां दुर्गा सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, जो भय के सामने साहस बनती है, जो निराशा के बीच उम्मीद जगाती है। हमारे यहां एक सुंदर लिखा गया है, विचार है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात यह वह शक्ति है जो हर जीव में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। यानी शक्ति बाहर कहीं दूर नहीं है, शक्ति हमारे भीतर है। नवरात्र और मां दुर्गा की कथा पौराणिक परंपरा में महिषासुर के अत्याचार से देवता और मनुष्य परेशान थे। कहा जाता है कि तब विभिन्न देवताओं की शक्तियों के समन्वय से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ और देवी ने महिषासुर का अंत किया। अब अगर इस कथा को आज के संदर्भ में देखें तो इसमें एक बड़ा संदेश छिपा है। महिषासुर सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, आज का महिषासुर क्या हो सकता है, जरा इस बारे में सोचिए। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारी नफरत, हमारी ईर्ष्या, हमारा भय और कभी कभी हमारी अपनी नकारात्मक सोच, ये सारे के सारे महिषासुर की तरह हमारे सामने खड़े हैं। और शायद नवरात्रि हमें याद दिलाते हैं कि बाहर की बुराइयों से लड़ने से पहले अपने भीतर की बुराई को पहचानना बहुत जरूरी है। 9 दिन, 9 शक्तियां। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नामों को अगर हम केवल धार्मिक दृष्टि से न देखकर जीवन के प्रतीकों के रूप में समझें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो हर रूप में कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलती है। शैलपुत्री स्थिरता का संदेश देती है, जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन हमारे मूल्य नहीं बदलने चाहिए। ब्रह्मचारिणी तप और अनुशासन की याद दिलाती है, आज के इंस्टा और ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। चंद्रघंटा साहस और संतुलन का प्रतीक है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ साहस काफी नहीं है, साहस के साथ विवेक भी बहुत जरूरी है। कुष्मांडा सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है, यानी अंधेरे में भी कुछ नया पैदा करने की क्षमता होना। स्कंद माता ममता और जिम्मेदारी का संदेश देती हैं। कात्यायनी संघर्ष और आत्मविश्वास की शक्ति है। कालरात्रि हमें याद दिलाती है कि डर से भागना समाधान नहीं है, कभी कभी अपने डर का सामना करना पड़ता है।

करता है। महागौरी शुद्धता और सरलता का प्रतीक है और सिद्धदात्री साधना के फल और पूर्णता का प्रतीक है। देखा, नौ दिन नौ रूप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सबक देते हैं। आज के समय में नवरात्रे क्यों जरूरी हैं, कभी सोचा है आपने? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे पास सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। हमारे पास स्मार्टफोन है, दुनिया की को हम हथेली पर रखकर चलते हैं, लेकिन कई बार अपने ही मन में कनेक्शन टूट जाता है। हम हजारों लोगों से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं लेकिन मन की बातें कहने के लिए किसी एक इंसान की तलाश करते रहते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन इनर पीस जैसे खत्म सी हो गई है। हम तेज भाग रहे हैं लेकिन कई बार पता ही नहीं चलता कि जाना किस तरफ है। ऐसे समय नवरात्र हमें दिनों का एक सुंदर संदेश देते हैं और वे अवसर भी देते हैं कि थोड़ा रुकिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं, मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है क्या, मेरे भीतर कौन सी आदत मेरी शक्ति बन रही है और कौन सी आदत मेरी कमजोरी। नवरात्र एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। जिस संस्कृति में हम देवी की पूजा करते हैं वह हमें यह भी याद दिलाती है कि हर महिला का सम्मान, सुरक्षा और सम्मान अवसर की हकदार है। वो मां दुर्गा की पूजा सिर्फ दीप जलाने तक सीमित ना रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हम अपनी बेटियों को सपने देखने दें, अपनी बहनों को आगे बढ़ने दें, अपनी माताओं को इच्छाओं को महत्व दें और महिलाओं को सिर्फ सम्मान के शब्द नहीं सम्मान के अधिकार और अवसर भी दें, तभी शक्ति की आराधना सार्थक होगी। बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत रखते हैं। व्रत का असली मतलब क्या है? नवरात्र में व्रत भी एक परंपरा है लेकिन व्रत का अर्थ केवल भोजन से दूरी बनाना नहीं है, शायद इसका एक गहरा अर्थ भी हो सकता है। कुछ समय के लिए अपनी नकारात्मक आदतों पर व्रत रखिए। नौ दिन गुस्से से दूर रहें, नौ दिन गुस्से का व्रत करें, नौ दिन चुगली का व्रत करें, नौ दिन किसी को नीचा दिखाने का व्रत करें, नौ दिन बेवजह बहस ना करने का व्रत करें, नौ दिन नकारात्मक सोच का व्रत करें और क्यों ना नौ दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का संकल्प लिया जाए। सोचिए, हम ऐसा कर लें तो नवरात्र केवल कैलेंडर में नहीं रहेंगे बल्कि हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी नवरात्र और इसके उत्सव को अलग से देखती है। आज की इस पीढ़ी में नवरात्र को अलग से देखने के बहुत सारे तरीके भी खोज लिए हैं। कहीं गरबा हो रहा है, कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं संगीत है, कहीं उत्सव है। यह सब हमारी संस्कृति की खूबसूरती ही है और हमें इसके साथ लेकर ही चलना है। परंपराओं के साथ रहना, रंग के साथ साथ चलना, यह हमें आगे बढ़ने का प्रतीक भी मानता है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और बातें भी जोड़नी चाहिए। लेकिन आधुनिकता के साथ साथ मूल संदेश को भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, उत्सव मनाइए, लेकिन साथ साथ उस शक्ति को भी याद रखिए जिसका उत्सव हम मना रहे हैं, क्योंकि उत्सव तब और सुंदर हो जाता है जब उसके पीछे का अर्थ भी सबको समझ आ रहा हो। नवरात्र हमें यह संदेश देते हैं कि अगर इन नौ दिनों में हम अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करें तो एक छोटा सा संकल्प लिया जा सकता है। क्या संकल्प लिया जा सकता है? पहले दिन अपने भीतर झांकने का, दूसरे दिन किसी बुरी आदत को पहचानने का, तीसरे दिन क्रोध को नियंत्रित करने का और चौथे दिन किसी रिश्ते को समय देने का और पांचवें दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने का और छठे दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का, सातवें दिन अपने डर का सामना करने का, आठवें दिन किसी को माफ करने का और नौवें दिन अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने का। अगर नौ दिनों के बाद भी हमारा मन थोड़ा शांत हो जाए, हमारा व्यवहार थोड़ा बेहतर हो जाए, हमारे भीतर की ऊर्जा किसी दूसरे के लिए और संवेदना पैदा करने लगे, तो समझिए हमारे नवरात्रे को सिर्फ मनाया ही नहीं है, हमने नवरात्रे को जिया है। नवरात्रे हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। शक्ति मिले तो अहंकार मत कीजिए, ज्ञान मिले तो विनम्र रहिए, सफलता मिले तो दूसरों का हाथ थामिए और मुश्किल आए तो अपने भीतर की शक्ति को याद कीजिए, क्योंकि जिंदगी में अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता है, कभी कभी एक छोटा सा दीपक अपने भीतर भी जलाना पड़ता है। तो इस नवरात्रि माँ में सिर्फ इतना मत मांगिए कि मेरी जिंदगी की सुविधाएं बहुत बढ़ जाएं, मेरी मुश्किलें खत्म कर दे, बल्कि यह कहिए कि माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मुश्किलों का सामना कर सकूं, और शायद यही नवरात्र का सबसे खूबसूरत संदेश होगा। शक्ति बाहर खोजने से पहले अपने भीतर पहचानिए। नवरात्रि के संबंध में शक्ति की आराधना और आत्मशक्ति की पहचान तक

0: ये वार्ता आपने सुनी, लेकिन कमलेश जी हमारे बीच बैठी हैं। इनके हाथ में मैं देख रहा हूं कि कविताएं बहुत चमक रही हैं, कुछ अलग सी विशेष सी कविता लेकर आई, हमारे बीच आई हैं। कमलेश जी, अब ओवर टू यू, आप अपनी कविता सुनाएं।
1: कविता का शीर्षक है उत्सव। आओ मनाएं साड़ी उत्सव। उत्सव भव्य परिधान के सुंदरतम उपक्रम का, उत्सव स्त्री के व्यक्तित्व को गरिमामय बनाती इस रचना धर्मिता का, उत्सव वनिता के सौंदर्य को चार चांद लगाती इस भूषा का, उत्सव एक अनवरत परंपरा का, उत्सव हमारी संस्कृति का, उत्सव साड़ी का। उत्सव हिम्मत साहस सहनशीलता संघर्ष और शौर्य की पराकाष्ठा का, उत्सव लक्ष्मीबाई का, उत्सव ज्ञान बुद्धि और विवेक का, उत्सव बहिणाबाई का, उत्सव ममता और वात्सल्य का, उत्सव हीरकणी का, उत्सव सेवा समर्पण और संवेदना का, उत्सव मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटेंगल का, उत्सव स्त्री के होने का। आओ मनाए साड़ी उत्सव। उत्सव स्त्री के होने का, आओ मनाए साड़ी उत्सव। मेरी इस कविता का शीर्षक है प्रेम। उन्होंने यादों के पन्ने कुछ इस तरह पलटे, उन्होंने यादों के पन्ने कुछ इस तरह पलटे कि किसी याद को चोट न लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता, और हर याद के साथ उनके झुर्रियों भरे चेहरे से जो आभ झलक रही थी उस रोशनी में मैंने देखा, हर याद के साथ उनके झुर्रियों भरे चेहरे से जो आभ झलक रही थी उस रोशनी में मैंने देखा, उनकी आंखों में तैरता प्रेम का सागर आज भी जस का तस, वैसा ही कमसिन, वैसा ही रंगीन, वैसा ही उदास, वैसा ही गमगीन। उनकी आंखों में तैरता प्रेम का सागर आज भी जस का तस, वैसा ही कमसिन, वैसा ही रंगीन, वैसा ही उदास, वैसा ही गमगीन, वैसा ही चपल और चंचल, और उनके पोपले होठों पर हंसी मचल गई। कविता का शीर्षक है कुमुदनी। कुमुदनी बोली कमल से कभी तो आओ पास, धीरज मेरा छूट रहा है टूट रही है आस, मैं रातों को खिलने वाली, मैं रातों को खिलने वाली, तुम जागृत होते सुबहों को, नदी के दो कूल हम तुम, जा रही है जिंदगी यूं बेसुरी सी, मैं रातों को खिलने वाली, तुम जागृत होते सुबहों को, नदी के दो कूल हम तुम, जा रही है जिंदगी यूं बेसुरी सी। कमल किंचित मुस्कुराया, कमल किंचित मुस्कुराया, कमलनी का ध्यान करके हृदय में उच्छ्वास छाया, कहने लगा कोमल कमलनी, कहने लगा कोमल कमलनी, प्रेम का परिणाम मिलना क्यों भला हो, प्रेम का परिणाम मिलना क्यों भला हो, प्रेम तो शाश्वत चिरंतन सत्य है प्रिय, मिलन का सुख तो क्षणिक है, मिलन का सुख तो क्षणिक है, विरह की ही वेदना तो प्रेम का प्रतिबिंब है प्रिय, अरे निष्ठुर नहीं आता समझ मुझको ये तुम्हारा दिव्य दर्शन, एक नज़र तो देख लूँ उन तुम्हारी पंखुरियों को, एक नज़र तो देख लूँ उन तुम्हारी पंखुरियों को, उपमित होती सुंदर आँखें, राजीव लोचन कमल नयन क्यों कहलाते चक्षु सुलोचन, प्रेम की अनुभूति को अनुभूति रहने दो अहो, मत करो उद्विग्न मन को भावना के बेग में तुम मत बहो, नियति के निर्देश को मानो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय तल में मन में मेरे तुम रहो। जल ही जीवन है, और आज मेरी कविता है पानी की। कविता का शीर्षक है मैं पानी हूँ। मैं पानी हूँ, बरसता हूँ बादलों से, छलकता हूँ आँखों से, बहता हूँ पसीने में, उफनता हूँ समुद्र में, मैं पानी हूँ, लहराता हूँ नदियों में, झरता हूँ झरनों से, कूदता हूँ प्रपातों से, सुबह सुबह हंसता हूँ तुहिन कणों में, मैं पानी हूँ, पंछी की प्यास में, जीवन की आस में, निर्मल उच्छ्वास में, विह्वल निश्वास में, पोरन के पत्तों पर ठहरता हूँ बूंदों में, गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी और कावेरी में, शिव की जटाओं में, ब्रह्मपुत्र का राजा हूँ मैं, जमुना की लहर बन, भादों की काली अंधेरी रात में, उमकता हूँ कान्हा के नन्हे नन्हे पैरों के स्पर्श को, लड़ता हूँ हवाओं से, मचलता हूँ घटाओं में, मोती सा टपकता हूँ नवयौवना के केशों से, लड़ता हूँ हवाओं से, मचलता हूँ घटाओं में, मोती सा टपकता हूँ नवयौवना के केशों से, अर्पण में तर्पण में, हृदय के स्पंदन में,

0: मनस्वी के मनन में, ऋषियों के तपन में, यज्ञ और हवन में उड़ता हूँ भाप बन, मैं पानी हूँ। दुर्योधन की फिसलन और द्रौपदी के अट्टहास में मैं ही तो हूँ महाभारत के मूल में। दुर्योधन की फिसलन और द्रौपदी के अट्टहास में मैं ही तो हूँ महाभारत के मूल में। वो मैं ही हूँ, शकुंतला की अंगूठी डूबी थी जिसमें। सूखा था देवकी के आंचल में दूध बन, सुनामी भी मैं था, कोशी के घटवार की आंखों में भी मैं ही था। कभी कभी बरसता हूँ बेमौसम भी, कभी कभी बरसता हूँ बेमौसम भी, क्योंकि ये पछुआ हवाएं जब भी करती हैं गुदगुदी, सिहर जाता हूँ मैं, नहीं रह पाता अपने आपे में। मैं पानी हूँ, नीर जल वारी सलिल, मैं ही सब तरफ ढल जाता हूँ, हर रूप में मिल जाता हूँ, हर रंग में, क्योंकि मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।
1: कमलेशी की कविता के बाद हमने बात की हिंदी की। हिंदी में बात करना हम सबको सहज भी लगता है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, क्यों ना आज भाषा के ऊपर कुछ बात हो जाए। और भाषा के ऊपर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी भाषा आपका गौरव।
2: अपनी मातृभाषा को या कहे अपनी माँ की भाषा को बालक स्वतः ही सीख लेता है और वही उसकी भाषा बन जाती है। भाषा यानी उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, उसकी पहचान भी बन जाता है और आपका ये पहचान आपको गौरवान्वित करता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा भारत बहुभाषी देश है और हमारे पास भाषाओं की इतनी बड़ी संपदा है कि दुनिया के अन्य कोई भी देश हमारी बराबरी नहीं कर सकता। संवेदना की स्याही से जब कण की कूची शब्द चित्र रचे, तब भाषा जन्मती है। कहते हैं देह स्वयं ईश्वर है और नित्य उसके दर्शन का माध्यम। इसी तरह भाषा भी वो भगवान है जिसके दर्शन होठों के माध्यम से होते हैं। ये होठ सबसे पहले अपनी मातृभाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक हिंदी के निर्माताओं में एक भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्तमान समय से लगभग 150 साल पहले उन्होंने अपनी कविता निज भाषा में लिखा था। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अब कुसूल। यदि हम विचार करें तो भाषा वास्तव में अनुभूति की आंशिक अभिव्यक्ति है। यदि सब कुछ भाषा में अभिव्यक्त हो जाता तो भाषा भाव नामक संज्ञा के गढ़े जाने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा में कहने की अनिवार्यता है, जबकि भाव अनकही भाषा है। वाचाल तो मौन में भी होता है, लेकिन उसकी परिणीति बोलने में होती है। भाषा वो मानी जाती है जिसकी परिणीति बोल में हो, अक्षर में हो या चित्रमयता में हो। भाषा को लेकर लंबे विमर्श है। व्याकरण के रूप में कृतियां हैं और पूरा एक शास्त्र है जिसे भाषा शास्त्र कहते हैं, लेकिन भाषा को शास्त्र अपने पाश में नहीं बांध सकते, वो बंधन जयी है। भाषा उद्दाम वेग से बहने वाली सदनीरा सरिता है, उसे शास्त्र के तटबंध नहीं बांध सकते। प्रत्येक भाषाभाषी अपनी भाषा को अपनी बोली बानी में देखता, सुनता और अनुभव करता है, तो अपनी बोली अपनी भाषा उसे सदैव मीठी लगती है। भाषा का सीधा संबंध स्वाभिमान से है। भाषा मनुष्य की नहीं, ईश्वर की पवित्र देन है। इसलिए अपनी भाषा को अपने अहंकार से जोड़ना और दूसरों की भाषा का अनादर करना ईश्वर की देन का अपमान है। सबकी भाषा मेरी भाषा की भांति ही सम्मान की अधिकारिणी है। जब ये भाव उत्पन्न होगा तो हमारी कामना होगी कि दूसरे की भाषा भी कभी मेरी भाषा बन जाए और विनोद कुमार शुक्ल की ये पंक्तियां साकार हो उठे। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूँ।
3: नवरात्रोत्सवानिमित्त विशेष हिंदी कार्यक्रम विविधा आपण ऐकत होतात। हा कार्यक्रम आता समाप्त होत आहे। आपण ऐकत आहात AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीचे कार्यक्रम।